देखिए पल पल लगो लेकिन फिर या गपी कोयोन गुरम गुरम लोग पल पल लगो लेकिन।

सारे दुनिया से कम कल कियाक टोक गंगा यारानिया देगवान गुल यांगा गलो डुबोने।